0: ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಯ
1: राप्ती बबई कैंपस तुलसीपुर दांग में कक्षा एघार भर्ना खुल्यो।
2: मध्यपश्चिमक उत्कृष्ट राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त कैंपस इस राप्ती बबई कैंपस तुलसीपुर दांग में कक्षा एघार मैनेजमेंट एजुकेशन ह्यूमैनिटीज जनरल लॉ संकाय तर्फ भर्ना खुला गरिएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
1: थप जानकारी का लागि राप्ती बबई कैंपस तुलसीपुर 12 कपड़ा देवी दांग फोन नंबर 082-5320-316 र मोबाइल नंबर 98-478-36-596।
3: अत्याधुनिक सिटी स्कैन सेवा अब तुलसीपुर को सुलभ सिटी स्कैन सेंटर में।
2: हजुर, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ तथा दक्ष अनुभवी रेडियो टेक्नोलॉजिस्टहरुबाट शरीर का विभिन्न भाग में भएका ट्यूमर, कैंसर, नाक कान घाटी, एपेन्डिक्स, मृगौला, अधिक टाउको दुखाई लगायत सीटी स्कैन को माध्यम यकीन र अवस्था को पहचान सहित उपचार करी ढुक्क रहनुहोस्।
4: पैसा र समयको बचत सँगै सिटी स्क्यान सेवाका लागि सुलभ सिटी स्क्यान सेन्टर तुलसीपुर छ। गोराई रोड हात्ती खुम्बा चोकदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ तुलसीपुर दाङ।
2: जुनसुकै बेला सम्पर्कका लागि फोन नम्बर 082-5590-401, मोबाइल नम्बर 97487-060-11 र 98578-40-601।

0: बादल आकाश आउँदो चट्ट्यान चुट्टुङ झरी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा यसै भरी
1: आधार स्वर्ग झम्पानी छ आधार स्वर्ग विदु मर्ने बाँच्ने